मोहब्बत चूमे जिनके हाथ जवानी पाँव पड़े दिन रात सुने फिर हाय सुने फिर हाय वो किसकी बात हो मोहब्बत।